चाड़ पर्व में यूरो पेंट्स प्रस्तुत करद रंगीन से घर बरसिन उपहार रु 50,000 को यूरो पेंट्स को खरीद में पाने लकी ड्रॉ कूपन पाने इन्वर्टर एसी एक टन डबल डोर फ्रिज इंडक्शन चूलो राइस कुकर वॉल क्लॉक बम्पर प्राइस में पाने एक जोड़ी को लगी बाली टूर यूरो पेंट्स घर मात्र होइन रंगाउनुहोस् सपना पनि।

0: सुरक्षित जीवन जिउन जीवन बीमा जरुरी छ। रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: नमस्कार, आप इतना घरी सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज के संग्री राहुल जाइट बा।
2: रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम पानी बरसे।
1: इस समय हो थारू गीत संगीत के, आप इस समय में थारू गीत संगीत सुन सकल जाई।

प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन

0: आयो।
1: नरेश भैया, आपके फोन आवे के बाद हम दौड़ के चली आए। भौजी कहाँ हिन?
2: वही खटिया पर सूती हिन बहिनी, वहारे चला जाए ना।
1: भौजी आपका कहाँ डसीली? घर के आसपास साफ सुघर रखा गया है, तब वो आपका सपोर डसीली।
3: हाँ बहिनी, यही एरिया से ऊपरा दसीस है। आपके भैया एम्बुलेंस का खबर तो कहीं है, पता नहीं कब आई।
1: ना घबरावा जाए भौजी, हमरे साथ में हन, आपका कुछ नहीं हुई, बल्कि गोर ना चलावा जाए। और नरेश भैया एम्बुलेंस आवे के समय लाग सकत है, नक्सरवे के केहू के मोटरसाइकिल है तो वही पर लेके भौजी का सर्पदंश उपचार केंद्र ले जाए के तैयारी करा जाए।
2: यही समय पर खाए वाला चीज नहीं देख चाहिए, स्वयं सेविका बहिनी।
1: जी हाँ, चिकित्सक जब तक ना कहे तब तक बीमारिया का कुछ खाए के नहीं दे के चाहिए।
4: सांप डस लिए के बाद सहज वातावरण बनावे और सांप डस लिए अंग का स्थिर बनावे के प्रयास करे के चाहिए। फट्टी बांध के सांप डस लिए जगह का ढेर हीले से रोक सका जात है। कसा कपड़ा, गहना जेवर, घड़ी, पेटी, अंगूठी आदि खोल दिए या ढील कर दिया जाए। बीमरिया अकताए गए पर और समस्या हुए के नाते बीमरिया का शांत रह के सहयोग करे के चाहिए। कितना पे लोग सांप डस लिए जगह से ऊपर रसरी से कस के बांधे के काम करत हैं। ऐसन करत के रक्त संचार में समस्या हो सकत है, जौने से सांप डस लिया शरीर के भाग काट के फेंके के अवस्था समेत आ सकत है।
5: सर्पदंश संबंधी विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नजदीक के सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में देख सका जात है।
6: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
7: हरेक गहनामा लुकेको हुन्छ एउटा सुन्दर सम्झना, विवाहको खुशी, तीजको उल्लास अनि मायाको चिनो।
8: ती अविस्मरणीय क्षणलाई अझ विशेष बनाउन आउनुहोस् जय सुप्पा देउराली सुनचाँदी पसल, बारगंगा 2 पिपरा, कपिलवस्तु।
9: उचित मूल्य र आत्मीय सेवा, पुराना गहना साटेर नयाँ बनाउने सुविधा, कम्प्युटराइज बिल र भरपर्दो ग्यारेन्टी।
8: जय सुब्बा देउराली सुनचाँदी पसल, विश्वासले रोज्ने नाम, सौन्दर्यले चिन्ने पहिचान, बारगंगा 2 पिपरा, कपिलवस्तु। सम्पर्क नम्बर 98575256349 र 98075

Essential. LG ले ले आयो नया LG Essential Series. अब किफायती मूल्य में refrigerator, washing machine, AC को complete range. 10 वर्ष को warranty सहित 0% no cost EMI. नागरिकता भाई पुग्छ.

0: अब जाए के घर के देवाल लिपोती के उराय लाग।
1: मुस्कान बिटिया, ए मुस्कान बिटिया, घर के देवाल लिपोत के नाई खत्म भवा, खेत में काम करे वाले का नहारी लेके जाए के रहा।
0: उराय लाग अम्मा।
1: ए अच्छा, हम नहारी बनाए के धई दे थे, अब भी लेके चली जाओ।
0: वो थे अम्मा। ओहो, यही देवालिया में बिल है, माटी से बंद कर दे पड़ा की काओ। हाँ, अब बंद कर दी था।
2: अरे बापा रे, अम्मा हमें सांप दस लीस।
1: अरे बाप रे बाप, कहाँ दस लीस बिटिया?
2: यही दही है हाथ में, दस लीस अम्मा।
1: अरे अरे, क्यों क्यों? अरे है क्यों? हमरे मुस्कान बिटिया का सांप दस लीस। अरे क्यों है, क्यों है?
3: अरे कहाँ हुई गवा, कहाँ हुई गवा काकी?
1: राकेश बाबू देखो ना, मुस्कान का सांप दस लीस की काओ।
3: ना घबराओ बजाय काकी, मुस्कान ना घबराओ, शांत हुई के बैठी रहो काकी, बल्कि मुस्कान का सीधा सुता बजाय और ना हिला बजाय।
1: वो थे बाबू, मुस्कान मुस्कान बेटा सीधा हुई की सुतो।
0: वो तो है
3: काकी, आप मुस्कान के पहिरा कपड़ा और गर गहना ढीला कह दिया जाए, न कस जाए के मेर से, और हाथ के चुरिया खोल दिया जाए, दस लिया ओकर हाथ न चला बजाय।
1: हो थे बाबू, और साफ दस लिया जगह के आसपास काट के इंजेक्शन से तान के या मुंह से चूस के विष निकाले के होए की?
3: नहीं काकी नहीं, साफ दस लिया घाव के आसपास काटे जारे चूसे के काम नहीं करे चाहिए, और कुछ नहीं खियावे चाहिए, पनियों नहीं, बुझा गए ना?
1: तब तो गहर मोहरा लाई के सपोर्ट दसी लिए जगह पर लगाई दे तो बाबू।
3: वो नहीं काकी, घरेलू उपचार जैसे कि जहर मोहरा, जंगली घास पात और जड़ी बूटी के प्रयोग नहीं करे चाहिए, बुझा गए ना?
1: बुझेन बाबू बुझेन।
3: काकी बल्कि रमेश का मोटरसाइकिल लेके आवे कहा जाए ना, जल्दी से जल्दी साधन खोज के एंटी बहनम दही जाए वाले स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए, मिला तो मुस्कान का जल्दी ठीक हो जाये। कहा जाए तब तक हमरिंग के गांव से कौन एंटी बहनम केंद्र नजदीक पड़त है, हम snakebitenepal.org के वेबसाइट में खोजित है। हाँ डाटा हम कैसे देखे पड़ा? हाँ लियो snakebitenepal.org वेबसाइट खुली गवा, हमरिंग के गाँव से तो गुरु सिंह सर्पदंश उपचार केंद्र में सर्पदंश के उपचार कई जात है, मुस्कान का वही ले जाके पड़ा।
1: राकेश बाबू मोटरसाइकिल लेके रमेश आई गए।
3: काकी हम मुस्कान का न हिलाए के मोटरसाइकिल के सीट के बीच में बैठाए के।